0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा अहला बराए खारजा पॉलिसी काया क्लास ने पीर के रोज जारी करदा बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने रूस के फौजी और सन्नती शोबे को हदफ बनाने वाली तकरीबन 1600 नए पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया एक्स से जारी करदा बयान में क्लास ने कहा है कि पाबंदियों में यह इजाफा फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की फहरिस्त में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। उन्होंने कहा है कि इनमें से निसफ से ज्यादा पाबंदियां बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी से मुतल्लिक हैं। हम रूस के लिए यूक्रेनियों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले हथियार तैयार करना नुमाया तौर पर मुश्किल बना रहे हैं। इनकी तैयारी की रफ्तार सुस्त कर रहे हैं और इनकी लागत में इजाफा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन काउंसिल ने यह भी ऐलान किया है कि कीमिया हथियारों के फैलाव और इनके इस्तेमाल को हदफ बनाने वाले पाबंदियों के इस निज़ाम की मियाद में 5 साल का इजाफा करके इसे 30 अक्टूबर 2031 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। काउंसिल ने इस निज़ाम के तहत अफराद पर आयद पाबंदियों की मियाद भी 1 साल के इजाफे से 30 अक्टूबर 2027 तक बरकरार रखने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि इन पाबंदियों का दायरा कार